श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं गुजराती कार्यक्रम गीतमाला 102.8 एफएम पर या तो www.diversefm.com पर। गीतमाला कार्यक्रम दर गुरुवार अपनी समक्ष रजूआत करने पूरी कोशिश करे छे रात ना 8-10 कलाके। श्रोता मित्रों, आ पटो अखाणो आ प्रमाणे छे। त्रण अक्षरनु मारू नाम सौथी ऊंचू छे मारू मान। ત્રણ અક્ષરનું મારું નામ સૌથી ઊંચું છે મારું માન, મધ્ય જાય તો પાડી બનું, પ્રથમ જાઉં તો બનું।